कंगन के अंदर से एक नल बनाया है। अगर वो पानी का मुहान ही बंद कर देगी तो ये लोग कितने दिन भूखे प्यासे लड़ेंगे।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

जैसे व्हाट्स अप वो बोलते डिवाइन तुझे स्लो पीना पसंद है टर्न वाटर वाइन तेरे पीछे जो खड़े वो से ब्लॉक करे शाइन दुनिया शर्माती व्हेन यू स्टॉप एंड यू स्माइल और बाकी मुझे पे छोड़ सुबह हंसते रहे स्टोरी लाइक अ मेलोडी हां तू बजते रहे ये पर्सनल है छोड़े नहीं लस्टर है मराठी है मुलगी और बोलती वो स्पष्ट है पहले थाली के बाद तुझे बाली दिखाएंगे सोच कैसे कैसे लोग मेरे शादी पे आएंगे ये बाकी फंसाएंगे बर्बादी बताएंगे और जो करूँ तेरा सिर्फ तुझे हंसाएंगे।

0: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए.
1: नंबर वन, मेड इन चाइना राजकुमारी चुन ली.
2: चुन ली
1: इंग्लिस्तान से राजकुमारी गुलगुलू ग्लोरिया. दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए.

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: आवरण थेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो येसु सेरांगदा हानाङ पुइसुला थेरे नेबा छनौट लस्युगो जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा जीवनला क्षण गर्दा श्रृङ्खलादी अङ्क 70 रङ्गनी स्वागत मुला नबियोग तामाङ लालन क्रिस्चियन कदिसे रङ्गलन सम्वेदी तर्क प्रयोग लमुला तसै बाइबल से याङदा हाइमाई थेरङला बढी अपिन मुला सन्दोसे रङ्गला पास्टर वा हजिबै अगुवादा रङ्गला सेवकाई बलवा निर्धारण लबरी पिनमुला चुयन धर्मशास्त्र से याङदा ख्रिस्टला शरीर नङरी गे लबरी हरङलासी मार्गदर्शन लसी लस्युला विवा तामदेन मेल आचा एफिसी 2 अध्यायलाई 21 थेदासनमा थे

ला थेन्दी याङला लुइला लाग्री रोला योजना पालन लदोला। जब याङ आज्ञाकारी तला चुसे बेनन क्रिस्चियन कदेदा याकर्खी टोलीला रूप्री डिक्सी घे लाब्री हाम्बा प्रत्येक मिसे सेवकाई प्रभावकारी सोबरी आवश्यक भूमिका पुरा लमुला। पहिलो कुरन्थी एक अध्यायला 9-10 परमेश्वर विश्वास लखम्बा परमेश्वर हिन्ना थेसे रङला झा याङला प्रभु येशु ख्रिस्ट देन छ्याम डिक्सी सेम गिक तबरी एनी गदेदा न्योइबा मुला। जो जो आले नाना आङा गदे दहेन से गाई एनी गदेदा याङला प्रभु येशु ख्रिस्ट अधिकार ग्याम एनी गदे रङ रङ नङरी डिक्सी च्यु बिवा नला बिन्ती मुला। ओछे मण्डली नङरी तिगै अधिक पत्ताम खाम्बुङ्गो बरु एनी गदेसी लबरी माइबा ताम गदेरी सेम गिक तसिन्यू। जब याङ प्रत्येक से व्यक्तिगत रूपले येशु से याङदा पिन्सुबा मिसन पुरा लजिबा तामुला तब याङ विभिन्न समूह गदेरी विभाजित तला याङ एक अर्का देन डिक्सी परमेश्वरलाई सेवा लजिबा तला। प्रेरित 2:46 ओछे एनी गदे दिन नोन जम्मन सेम गिक तसी परमेश्वर र मन्दिर रि धु तमुवा ओछे थेनी गदे दिम्री निसी प्रभु भोज चबादेन ज्यावा सेम थोसी तंसी चबा थुङबा लमुला। चु ख्रिस्टला शरीर लागरी परमेश्वर लहिन्बा याङ एकतरी डिक्सी गेलाई येशु ख्रिस्ट याङला परमेश्वर रूब्री सेवा लासी याङसे उद्देश्य सोला। फिलिपी 3:17 जो जे आले नाना गदे एनी गसे नुन नाई लबा रङ नुन लौ ओछे नन्से लबा रङमान गे लसी ब्रबा मि गदेदा च्यागो च्यासी थेनी गदेसे लबा रङमान गे लौ। चु परमेश्वरला आज्ञा हिन्बा

0: तिमीलाई छोड जानु मेरो होइन, बाध्यता हो। म जहाँ गए त भने मेरो मन पनि तिमीसँग हुन्छ। यस्तो नभए
1: रोबिन जी, मजबूरी का नाम देकर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी।
0: यदि मेरे याद आए मैंने मूल्य कुछ नहीं आ रहा, आप फिर आप लोग सुखा।